0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: चल गया। बैनुल अक्वामी फौजदारी अदालत ने अपने चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान को मुअत्तल कर दिया है। फौजदारी ट्रिब्यूनल के प्रोसिक्यूटर करीम खान के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और जिनसी हरासानी के इल्जाम की बुनियाद पर जारी अक्वामी मुत्तहदा तहकीकात के बाद उन्हें ओहदे से हटा दिया गया है। ट्रिब्यूनल इंतजामी ने कहा है कि करीम खान को ट्रिब्यूनल के 125 रुकन ममालिक पर मुश्तमिल तादीबी तहकीकात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तहकीकात के नतायज खुफिया रहेंगे। करीम खान मई 2025 से छुट्टी पर हैं और हालिया पेशरफ्तों के बारे में जारी करदा बयान में उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट में बद इंतजामी या इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का कोई सबूत नहीं मिला, लिहाजा उन्हें बरी कर दिया गया है। वाज़ह रहे कि करीम खान ने इससे कबल गजा में जंगी जराइम और इंसानियत सोच जराइम के इर्तकाब की वजह से इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू और साबिक वज़ीर दिफा याव गालांट के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई थी। यह तहकीकात 2024 में इसराइल की जानिब से गजा में फलस्तीनियों के खिलाफ नस्ल कुशी जंग शुरू होने के बाद अमले के एक रुकन की शिकायत के बाद शुरू की गई थी।
2: रूस की तरफ से हमलों के नतीजे में यूक्रेन के शुमाल मशरकी इलाके खारकीफ में 4 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए हैं। खारकीफ के इलाकाई गवर्नर ओलेग सेनेगोबोफ ने मंगल को टेलीग्राम से जारी करदा बयान में कहा है कि दुश्मन ने चौकियों शहर को निशाना बनाया है। हमले में एक 22 साल औरत समेत 4 अफराद हलाक हो गए हैं। स्नेकियोपोफ ने कहा है कि हमलों के नतीजे में आग लग गई, कम से कम 18 गाड़ियां तबाह हो गईं, कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारतों की खिड़कियां उड़ गईं और इमारत के चेहरे को नुकसान पहुंचा है। एक और बयान में खारकीव के मेयर इगोर तेरखोफ ने अपने शहर में 10 अफराद के जख्मी होने की इत्तला दी है। वाज़ह है कि गुज़श्ता चंद माह में रूसी हमले तेज हो गए हैं। यूक्रेन ने रूसी इलाके में मजीद अंदर तक ड्रोन हमले करके जवाबी कार्रवाई की और कहा है कि हदफ बनाए गए मुकामात ज्यादातर फौजी और तवानाई के मुकामात थे। ये हमले यूक्रेन के सदर विलोदोमीर ज़ेलेंस्की की लंदन में बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के रहनुमाओं के साथ बातचीत के बाद कीव वापसी के दौरान किए गए हैं। मुलाकातों का मकसद 4 साल जंग के हल के लिए आगे बढ़ने का रास्ता तलाश करना था।
1: जर्मनी और फ्रांस ने अपने जेट तैयारा प्रोग्राम को मनसूख करने पर इत्तफाक कर लिया है। जर्मनी और फ्रांस ने शरीक कंपनियों के दरमियान बरसों से जारी इख्तलाफात के बाद अगली नस्ल लड़ाका जेट मुश्तरक मनसूबे की मनसूखी पर इत्तफाक कर लिया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रॉन ने यह नतीजा अखज़ किया है कि शरीक कंपनियां फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोग्राम के तहत मुश्तरका लड़ाका तैयारा बनाने के माहदे पर नहीं पहुंच सकीं। यह मंसूबा फ्रांस के राफेल लड़ाका तैयारों और जर्मनी के यूरोफाइटर तैयारों में जिद्दत के लिए 2017 में शुरू किया गया था। हुकाम का कहना है कि मुश्तरका लड़ाका जेट मनसूबों के खात्मे के बावजूद वसीतर जेट प्रोग्राम जारी रहेगा और वसीतर यूरोपीय दिफाई तआवुन और फौजी टेक्नोलॉजी की तरक्की पर तवज्जो मरकूज रखेगा।
2: शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन और चीन के सदर शी जिनपिंग ने शुमाली कोरिया के दारुलकूमत प्योंगजांग में एक सरबराही मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तआवुन के फरोग पर इत्तफाक किया है। शुमाली कोरिया की सरकारी खबर रसां एजेंसी KCNA ने मंगल को शाया करदा खबर में कहा है कि दोनों रहनुमाओं ने दोतरफा ताल्लुकात पर एक नया बाब खोलने पर इत्तफाक किया है। KCN के मुताबिक किम ने शी को वाहद चीन उसूल की मुकम्मल हमायत से आगाह किया है। वाहद चीन उसूल बीजिंग के इस मौकफ पर मबनी है कि बैनुल अक्वामी सूरतयाल ख्वाह कुछ भी हो, आपने ताइवान के दोनों दर्रे वाहद मुल्क के पास रहेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक 7 साल बाद इस पहले दौरा शुमाली कोरिया में शी ने किम से कहा है कि वो इस दौरे को दोतरफा ताल्लुकात में नुमाया पेशरफ्त के मौके के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। KCNA ने मजीद कहा है कि दोनों रहनुमाओं ने आला सतही हुकाम के दौरों के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक रवाबत को गहरा करने पर भी इत्तफाक किया है। शुमाली कोरिया के ज़राए ब्लाग ने यह जिक्र नहीं किया कि आया रहनुमाओं ने प्योंगजांग के जौहरी हथियार प्रोग्राम पर बात की है या नहीं।
1: भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश के एक स्टील प्लांट में पेश आने वाले हादसे में इब्तदाई मालूमात के मुताबिक 8 मजदूर हलाक और 6 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा विशाखापट्टनम शहर में वाकई एक स्टील फैक्ट्री में पेश आया। बताया जा रहा है कि क्रेन के जरिए ले जाया जाने वाला पिघला हुआ लोहा, जिसका दर्जा हरारत तकरीबन 1600 डिग्री सेंटीग्रेड था, अचानक नामालूम वजूहात की बिना पर वहां काम करने वाले मजदूरों पर गिर गया। इस हौलनाक हादसे पर हिंदुस्तानी वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने हादसे में हलाक होने वाले मजदूरों के अहल खाना से ताजियत की है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें खत्म हुईं।

सामिन, सूडान में 15 अप्रैल 2023 को शुरू होने वाली खाना जंगी अब अपने तीसरे साल को पीछे छोड़ चुकी है। इस जंग की वजह से होने वाली इंसानी, सियासी और इकतसादी तबाही ने मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से तश्वीश को मजीद बढ़ा दिया है। अक़वामे मुत्तहिदा के आदाद व शुमार के मुताबिक लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, बुनियादी अवामी खिदमात मुकम्मल तौर पर ठप हैं और सूडान दुनिया के बदतरीन इंसानी बहरानों में से एक का सामना कर रहा है। जंग के आगाज़ में ये उम्मीदें थीं कि फरीकैन में से कोई एक जल्द ही फौजी बरतरी हासिल करके जंग ख़त्म कर देगा, लेकिन वक्त के साथ साथ ये उम्मीदें दम तोड़ गईं। अब सूडान की मुसल्ह अफवाज और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस दोनों के लिए ही हतमी फौजी फतह का इम्कान इंतहाई कमज़ोर हो चुका है। यही वजह है कि अब बैनुल अक्वामी और इलाकाई ताकतों के दरमियान सियासी हल की तलाश ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। ख़ास तौर पर जून 2026 के पहले हफ्ते में आदिस अबाबा में सूडानी सियासी और सिविलियन रहनुमाओं का मुजवजा इजलास इस सिलसिले में एक अहम पेशरफ है। इस हवाले से ऑरसैम के शुमाली और मशरकी अफ्रीका के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कान देवेजी ओलू का तज़िया पेश खिदमत है। हालिया महीनों में सूडान के बहरान के हवाले से सबसे अहम पेशरफ्त ये हुई है कि मुख्तलिफ सफारती कोशिशें किसी हद तक एक मुश्तरका नुक्ते पर जमा होना शुरू हो गई हैं। अफ्रीकी यूनियन, IGAD, अक़वामे मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, अरब लीग और सूडान के मामले पर असरअंदाज होने वाले ममालिक जैसे अमरीका, सऊदी अरब, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात अब इस बात पर मुत्तफिक नज़र आते हैं कि इस जंग का कोई फौजी हल मुमकिन नहीं है। इस इत्तेफाक राय ने माजी की बिखरी हुई सफारती कोशियों को एक मुश्तरका सियासी फ्रेमवर्क में ढालने का रास्ता हमवार किया है। बर्लिन के उसूल, अफ्रीकी यूनियन का रोड मैप और IGAD के फैसले अब एक दूसरे के मददगार अनासर के तौर पर देखे जा रहे हैं। ताहम ये बात जहन में रखनी चाहिए कि यह सफारती हम आहंगी अभी बहुत नाजुक है। सूडान की जंग अब सिर्फ दो फौजी धड़ों के दरमियान ताकत की जंग नहीं रही, बल्कि ये इलाकाई और बैनुल अक़वामी रकाबतों के असरात के साथ एक पेचीदा तनाज़ा बन चुकी है। मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, इथियोपिया और बाज़ खलीजी ममालिक के सूडान के मुख्तलिफ धड़ों के साथ ताल्लुकात ने इस जंग को बैनुल अक़वामी रंग दे दिया है। इसलिए सफारती सतह पर होने वाली कोशिशों के लिए मैदान जंग के फौजी हिसाब किताब को फौरी तौर पर बदलना आसान नहीं लगता। इसके बावजूद मौजूदा सूरत हाल जंग के इब्तदाई सालों की फौजी फतह की उम्मीद वाले रवैये से काफ़ी मुख्तलिफ है। अदिस अबाबा में होने वाले मुज़ाकरात की अहमियत बिल्कुल इसी जगह सामने आती है। सूडान के बहरान का असल मसला किसी नए सालिस की कमी नहीं है। गुज़श्त 3 सालों में जद्दा मुज़ाकरात से लेकर मनामा कोशिशों तक और अफ्रीकी यूनियन की कोशिशों से लेकर मुख्तलिफ इलाकाई राबतों तक कई सफारती अमल आजमाए गए, लेकिन उनमें से ज़्यादातर कोशिशें ऐसी थीं जिन्हें या तो सूडान के अपने सियासी रहनुमाओं ने दिल से कबूल नहीं किया या फिर बैरूनी ताकतों के दरमियान मुनासिब कोऑर्डिनेशन की कमी रही। इसलिए आज ज़रूरत किसी नए सालसी निज़ाम की नहीं, बल्कि मौजूदा सफारती कोशिशों को एक ऐसे मुश्तरका सियासी प्लेटफॉर्म में बदलने की है जिसे सूडानी रहनुमा खुद आगे बढ़ाएं। इस मोड़ पर सबसे अहम सवाल यह है कि क्या अदिस अबाबा के मुज़ाकरात ऐसा कोई मौका फराहम कर सकते हैं। खुशाइंद बात यह है कि सूडान के सिविलियन और सियासी रहनुमाओं ने हाल ही में एक मुस्बत बातचीत का माहौल बनाना शुरू कर दिया है। बर्लिन और नैरोबी में होने वाले राबतों ने यह दिखाया है कि तवील अरसे से बिखरे हुए और एक दूसरे के हरीफ सिविलियन धड़े कुछ मुश्तरका उसूलों पर इकट्ठे हो सकते हैं। ये बात उन उम्मीदों को बढ़ाती है कि सिविलियन रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा फूट को ख़त्म किया जा सकता है, जो जंग के आगाज़ से ही सूडानी सियासत की सबसे बड़ी कमज़ोरी रही है। सूडान में फौजी क़ुव्वतों के सियासत पर हावी होने की एक बड़ी वजह यही थी कि सिविलियन ताकतें एक मुश्तरका सियासी विजन पेश करने में नाकाम रही थीं। इसलिए अदिस अबाबा का ये अमल इस मुश्किल को हल करने के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। दूसरी तरफ हमें यह भी समझना होगा कि सूडान में सियासी अमल और सिक्योरिटी की सूरत हाल एक ही रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ज़मीन पर जंग अब भी जारी है, ख़ास तौर पर दारफूर और कुर्दुफान के इलाकों में शदीद फौजी नकलो हरकत देखी जा रही है। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी रास्ते खोलने, जंगबंदी के निज़ाम को चलाने और शहरियों के तहफ़ जैसे मामलों पर अभी तक कोई ठोस पेशरफ नहीं हो सकी है। इसलिए अदिस अबाबा मुज़ाकरात से ये उम्मीद रखना गैर हकीकी होगा कि इससे जंग फौरन ख़त्म हो जाएगी।
اس کے بجائے اس اجلاس کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگایا جانا چاہیے کہ سوڈانی رہنماؤں کے درمیان مشترکہ اصول طے پا جائیں اور مستقبل کے سیاسی عبوری دور کا ایک خاکہ تیار ہو سکے۔ اس تناظر میں ادیس ابابا مذاکرات سے دو بنیادی نتائج کا نکلنا انتہائی اہم ہو سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ ایک ایسا مشترکہ اعلامیہ قبول کیا جائے جس میں سوڈانی ریاست کا تحفظ، سویلین سیاست کا مرکزی کردار، انسانی ہمدردی کی ترجیحات اور فوجی حل کو مسترد کرنے جیسے بنیادی اصول شامل ہوں۔ ایسا متن سوڈانی سیاسی رہنماؤں کی طرف سے پہلی بار ایک وسیع سیاسی معاہدے کی شکل میں سامنے آئے گا۔ دوسرا اہم نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا روڈ میپ تیار کیا جائے جو سوڈان کے اندرونی مذاکرات کے ایک جامع عمل کی طرف لے جائے، جو مستقبل میں ایک سویلین عبوری حکومت کی بنیاد بن سکے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ سوڈان آج اپنی تاریخ کے نازک ترین موڑ سے گزر رہا ہے۔ یہ جاری جنگ نہ صرف موجودہ سیاسی نظام بلکہ سوڈانی ریاست کی سالمیت اور مستقبل کے لیے بھی ایک خطرہ ہے۔ اس لیے ادیس ابابا مذاکرات کو ایک حتمی حل کے بجائے ایک ایسے جامع سیاسی عمل کا نقطہ آغاز سمجھا جانا چاہیے جو سوڈان کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچا سکے۔ اگر سوڈانی رہنما اس موقع کا فائدہ اٹھا سکیں اور ایک مشترکہ سیاسی زمین تیار کر لیں تو سال 2026 واقعی سوڈان کے لیے جنگ کے خاتمے اور امن کے دور کا آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ اور سام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جی اولو کا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

क्या कोई बगैर अनस्थीजिया या नार्कोज के अपने जिस्म पर जराही का अमल करने की ख्वाहिश जाहिर करेगा? बिलाशुबह इंसान इस तरह के दर्द के बारे में सोचकर भी कांप उठता है, लेकिन तिब्बी साइंस अगरचे इंसानी तारीख जितनी पुरानी है, जदीद अनस्थीजिया के तरीकाकार हालिया दौर का एक मौजजा है। आम असलाहत में अनस्थीजिया एक मशक है जो खुलियात के ख्यात अफाल को आर्जी तौर पर सुस्त या रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकि जराही के तरीकाकार को बिला दर्द के अंजाम दिया जा सके। अगरचे माजी में मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन जदीद दौर के तिब्बी अनस्थीजिया की बुनियाद एक इतफाकिया दरियाफ्त है जिसकी तारीख सिर्फ 200 साल पुरानी है। जनरल अनस्थीजिया की पहली कोशिशें गालबन कबल तारीख में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों की दवाएं थी। अल्कोहल सबसे कदीम मरूफ ट्रैंकोलाइजर में से एक है।